0: भी आज हमें आसमान पर ला बैठाया।
1: देख लीजिए,
0: कहीं गिरा ना दीजिएगा।
1: तो फिर संभाल के रहिएगा।
0: इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं।
1: एक
0: खुदा
1: और दूसरी
0: प्यार।
1: मुझे डर है कहीं आप उन्हें न लगे। आइए
0: एक एक एक एक दिल की बात सुनती जाइए।
1: एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए।
0: मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

भरजरिता हिरवा शेला पांघरून नवा भरजरिता हिरवा शेला पांघरून नवा।

0: तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ